0: कि क्षणतामा बने दे बाहर जो माता से रहता थीं फल नौ न्यू बोले अफेयर जो बता साउदी बाकुम्बा से नहीं ना पूजा बक्की ने पिसना
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.